कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लोहो किस सोचो चितवो,

एते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भय जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब एहो कहां कमावन परिया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो

कृष्ण रचाया, कहो नानक करन हार है आपे, सतगुर परम चुकाया, गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिथे, जप तप संयम कर्म कमाणी, एहे ओरे मूसे रहाउ, बरत नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है भाई, मुहा काम ना आया, तीर्थ नाए अर धरनी भ्रम।

जियो किस निव निव लागू पाई जियो ओथी पंडत बेद खोजंता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपो नाम त्याई जियो पहे कृपाल स्वामी मेरे जियो अतत पवित लग गुर के पैरे जियो प्रम पहु काट किए निर्वैरे जियो गुर मन की आस पुराई जियो जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सोभा बंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदेश।

वण तेन त्रि भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन।

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिर जनहार, गुर तुठे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला पंजवा।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो। एहे विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठतावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड़ता ही बिसरावे। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा। साधु इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। या ते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर सिहोरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरे अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न इक ठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तत करह केते मुन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय
मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रे भवन धारे
1: आत्म चीना सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारे कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट महखासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बिचारी दूजे पाए दैत संघारी गुरमुख साच भगत निस्तारी बूढ़ा दुर्योधन पत खो

सुख पावे परम पलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीरज हर नाय, नानक नाम मिले गुण गाय, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पैर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोल शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुल है सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहा सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान से अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन खाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजै पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावह, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस है, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस है। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीना आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मरमर जम्मे वारो वार। सूतक अग्न पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हमें जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किस कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़े आ तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

एहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिर अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाई हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाई पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संता।

ताय साच ना छपै जे को रखै छुपाय ज्ञानी बूझ सहज सुपाय गुरमुख साच रहिया लिभ लाय हमे माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाय सतगुर दाता शब्द सुनाय धावत राखै ठाक रहाय पूरे गुर ते सोजी पाय आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावह सच गुण तास दासन दास नित होवह दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावै सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोय गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होय हुकम पछाणे बूझे सच सोय।

सब जग मह लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडभागी, हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध

दिन रहन हर लिव लाए, कर जाए पावह रंग महली, गुर मेले हर मिलाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभत जाए। पाखंड लोभी मारी है, जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू, मैल पाखंड परम गवाए। हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगती मल लह जाए। मन करहला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए। एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए। हर दरगाह पैनाया, हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या, गुरमुख कार कमाए। गुर आगै कर जोदड़ी, जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन करहला विचारिया, विचार देख संभाल। बन फिर थके बनवासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल। मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ। मन करहला विचारिया, मनमुख फाथिया महा जाल। गुरमुख प्राणी मुक्त है, हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, सत संगत सत गुर भाल। सत संगत लग हर त्याई है, हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वडभागिया, हर एक नदर निहाल। आप छडाए छुट्टी है, सत गुर चरण संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, विच देही जोत संभाल। गुर नौ निद नाम वखालिया, हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला, चतुराई छड विकराल। हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड़ भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल। गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया, जम मारियड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवह बाहर पाल। गुरपुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा संभाल। हर रंग कदे ना उतरे, गुर सेवा शब्द संभाल। हम पंखी मन करहले, हर तरवर पुरख अकाल। वडभागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल। राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां, अष्टपदिया। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। जब इहो मन मह करत गुमाना, तब इहो बावर फिरत बेगाना। जब इहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कट कट कीना। सहज सुहेला फल मशकीनी, सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किसको इहो जान समंदा, तब सगले इस मेलह फंदा। मेर तेर जब इन्ह चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन्हें अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किस कर माने पेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सब किस सूझिया। जब इह तावे माया अर्थी, नह त्रिपतावे नह ते सलाथी। जब इसते इह होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है। दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन।

नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदै रविया सोए मन तन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाउ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत वस आवै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताकै आत्मै हुई प्रगास।

सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जा की है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरे ता सबको मीत हर स्यो जुरे ता निश्चल चीत हर स्यो जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरे ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसके संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम के रंग। जा कै काम उतरे सब भूख, जा कै काम ना जो है दूत। जा कै काम तेरा वड गमर, जा कै काम हो वह तू अमर।

बात एक कह आप अनेक कह पांत जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ट फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव गुर कै बचन सुन रसन वखाणी गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा परम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाउ निध जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की पासा गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दास राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेव।

सार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सहु जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्य मुंद मन अमाहो साजन रहस्य दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना।

आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सुहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़े आरे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोहे ना सूजे नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाइए। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलरिए जियो हर सिओ चित लाए, सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए। अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी तां कंत प्यारी नामे तरी प्यारू, नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गलहारू। तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए, नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए, बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए, कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई कापड़ तन सुहावै जां फिर भावै, गुरमती चित लाइऐ सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइऐ। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमै मारे इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हम मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो, हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारी, रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारी। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारी। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारी। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारी। सच शब्द सिंगारी हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारी। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारी। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाए पुकारी। नानक मनमुख थाऊ ना पाई, बिन गुर अत प्यारी। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे। जीवतियां इयों मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जी।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

हर पाई, घर बैठिया हर पाई, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाई, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआई, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रह लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

छोड़ परदेश सदाई दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए।

सखा हर जीव गुरपुरख बधाते। पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया। कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया। सास सास ना घड़ी विसरै

सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हों विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आप हो नाह प्यारे हों माने अर्पी सब ताने अर्पी अर्पी सब देसा हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पै संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो बजी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरख उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावहि। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली। मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी, बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवा सलोक, पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिखदा हनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु, त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधिये, जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन आराधु, बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए, ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी, करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू, शरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला, विसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उद्म करेहा मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंते। सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवारे
पनीत करै तिस जनतै। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंदह गाइयै। कल कलेश मिटह भ्रम नासह, मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम त्याइयै। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, से वड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। ब्रह्म खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आप है किया कराया, आप है करना जोग, नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायु, आपह बाप आप ही मायु, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा प्रभु।

बखाननु नानक एक अनेक पौड़ी ओंग गुरमुख कियो अकारा एक है सूत परोवन हारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आच है अच प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहा व्यापहता हूं जो एक शाद अन कत ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना तेह मिटे नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो नफासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत

मेरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझह सो प्रभ सदहु संग लेख गणत ना छूटी है काची भीत ना सुध जिसे बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरन नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ विकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल।

लवै न को एक आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन ना महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन ना आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

या भव जल करना यया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक तेह सुख पाया जा कै हियर एक सलोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको

नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कस दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक हाथ खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह आनंद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल खेद ना दुख ना दान ते जाको नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो हो सास सास जप नीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आनना कथतो कोए आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होना जत कत ओही समाहे कुलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोहो नानक ते गुवार पौड़ी गंगा अंगरास काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू कोवाय कर कृपा जिह आप दुआई गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जिह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आप गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती सीतल मन सुखी शंत गोबिंद गुण गाय ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी दास दासन के पानी हारी छछा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करहु भगवंता छाड़ सियानप बहु चतराई संतन की मन टेक।

नानक पाप बनासे कद के सलोक ठाक ना होती तिन्हो दर जेह हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ था है नाही जो सगल त्याग एक लपटाई ठहक ठहक माया संग मुए वाक कुशल न कतहू हुए ठांड परी संत है संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। सलोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसे बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हौ हौ आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीतै कोवे हौ मैं अनस्यो लर मरे सो सोभा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेस ना को जाने आपनु एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यों प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपाले नानक हम है आपह माई बाप सलोक थाके बहुबिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारहु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्स आधार पौड़ी दद्दा दाता एक है सब को देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभ कीता दर्द निवार है जाके आपे नानक तेते गुरमुख त्रापे।

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सुबा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक।

संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हों हों बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराद हरे संत संग जेहे रिद बसेओ नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावहो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाय दुत्तर महा बिखम एह माय गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेहे परम सुख पाया। सलोक माया डोलै बहु विधि

जोखिन मैं ऊने सुबर पराहु खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ इयाना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मटावो। सिमरो जास बिसंबर एकै नाम जपत अगंत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाख्य।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड पागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

है अपमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सोगनिय सब ते ऊंचा। जाता मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साजन।

मान सगल कटा को देव दान करण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

आश्रम कर संग सहाय किस पर हर चंदन लेप उतारे धोय गर्धब प्रीत पस्म संग होय अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान

दृढ़ कर्मान मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियै रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाए। गोविंद भजन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक ता कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अप

रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावै तिस लय लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति। कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, ये प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिसको सिमरत परम गत पाव है। जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे है, तिसै त्याग कत अवर लुभावे है।

खानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जिह प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बसारी जिह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो एक

का ध्यान जिह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चतारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मोह।

प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो

मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगह हर नाथ नानक इनकै।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अब महान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हौं ताप, साधक्या संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बगाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू तावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक्या संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक्या संग दृढ़ सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मी

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ना पाईए धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

प्रभ भावे बिन सास्ते राखै, प्रभ भावे ता हर गुण भाखै, प्रभ भावे ता पतत उधारै, आप करै आपन बीचारै, दोहां सिरियां का आप सुहामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राख तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत भिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

तब इसको सुख नाही कोई। जब ए जान मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग

लख को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसी

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कश उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप माने अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी।

नानक ज्योति सपाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी

हर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओह सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट।

बड़ भागै, नाम जपत पावह विश्राम। नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुपाए हुए सो होए।

बिरथा जन नहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थम थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है।

संग मिल जोत प्रगटावे दिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिन लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसह चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरह अजान कौन बस्त आई तिरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभमान ले हो।

या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगाह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के धोए तोए पियो अर्फ साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ऊट गही संत है दारे आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिस का ओह करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया केह लोय जा कै हृदय एको होय सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन

राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे।

ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर न बूझ करत बिचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभु कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

ताँ की गत मित कोए ना लाखै, प्रभ के सेवक को ना पहुंचै, प्रभ के सेवक उचते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप ताँ को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखै अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करहै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपियै, ई अमृत इहु मन तन तृपियै, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबत भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोध हो हर कह नाए।

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। यों रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।

एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहे प्रब व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन ताने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने

ज्ञान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मलाए नानक भगति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै

जाओ, मन तन अंतर इही सो आओ, नेत्रहु पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला कोहु पावै संग, एक बस्त दीजै करमया।

आधार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक कर न हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

पति यारा, तह कौन कतह कौन सुनने हारा, बहु बेअंत पूछते उच्चा, नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई कहा।

आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्थार। जान तिस भावे तां सृष्टि अपाई, अपने भाणे लई समाई। तुम ते

की दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पये अमरा।

अंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पायाल सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल पांतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वै संतर वाहे चार कुंट दैद से समाहे तिसते भिन्न नहीं को ठाव गुर प्रसाद नानक सुख पाव वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक पाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खिले खेल मोल न पाइए गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावै तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किनै कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाई नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुने अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परने हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय, गोविंद जस गाय हर नीत।

आप तजहु गोबिंद भजहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संगारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित में

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहु नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यो बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ बोलह सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नान

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक त्यो संजम प्रभ कृपा पाइय।

कौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चार

पौड़ी 14 चार कुंट प्रभयाप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान सलोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जाने ओ प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होय सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोय नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोय महला चौथा हों मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हों मैं मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे होमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया तेरा शरीक को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तुद जेवर दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मनमुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरना।

तू है पढ़िए तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़िए तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़िए तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करिए।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा भला मनाएं दा तिस दा बुरा क्यों होए सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी जिस साहिब भावै तिस बख्श लए सो साहिब मन पाणी जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

पाई, गुरसिखी अमृत बीजिया तिनी अमृत पल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगहा सची पैनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमाव है, ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए, जहां सतगुर सराफ न

आपे वर्तै नित कर कर देखै चलत सबाय। महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारिया नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रह मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावै तिवें चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया तिन हर आप मलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई। जो आन दिन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सुच संजम। हर नामे ही त्रिपतावै हर नाम तान हर नाम देवान। हर नामो रख करावै जो चेत लाए पूजे गुरमूरत। सो मन इच्छे फल पावै जो निंदा करे सतगुर पूरे की। तिस करता मार दिवावै फिर ओह वेला ओस हथ न आवै। ओह अपना बीजिया आपे खावै नरक भोर मुहे कालै खड़िया। ज्यों तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरणी पवै ता उबरै। जां हर हर नाम ते आवै हर बातां आख।

लालच अटिया मनम कहोरे गल्ला राती ऊंगै दबिया नवे सोत सब ढिला मन मुखा दै सिर जोरां अमर है नित देव है भला जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे से अपवित अमेर खला काम व्यापेक सुध नर से जोरां पुछ चला सतगुर कै आखिया जो चलै सो सत पुरख भल भला जोरां पुरख सब आप अपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक भल भला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिया सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे से कूड़े आर कूड़े

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वेमुख वेमुख नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूह पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुंह काला दोहां वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया।

सच साहा हमारी, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह, गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी ओना अगै पिछै थां नाही जो सतगुर मारे।

हर तिनका दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही, तुह करतै आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही, नावै की वडियाई वड्डी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदै गुरु बह टिकिया, तिस जन की वडियाई वड्डी होई, तिस को जगत निमया सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई, तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह, जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै, सो पूरा होई, गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करतै आप वह टिकिया,

चरण धोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम त्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया, महला चौथा वडभागिया सुहागनी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए पौड़ी। एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्निया, इको सुनिया।

हृदय है। जिन हर बसिया मन माहे, हर दरगह ते मुखी उजले, तिनको सब देखण जाहे। जिन निरपव नाम त्याया, तिनको भव कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको धुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे। वे आप तरे सब कटंब सियो, तिन पिछे सब जगत छडाहे। जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत पई हरियावली।

इन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो है पाए पौड़ी।

सब गवाए से जिन रखन को हर आप होए होर केती चाख चाख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पांदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन

ते भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड्याई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो सद घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

है, क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है, मल होमे कड्डै धोए, सच वणंज है रंग सियो, सच सौदा होए, तोटा मूल ना आवे, लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच वणंजिया, जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी सालाही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराली, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाली।

उठा सतसंगत में हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध

वंदे शब्द लगावन हार जन नानक दिन को कृपा पई तिन सेवया सिरजन हार पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडो लिया तिन अंदरों ही सच लादया सच साहेब सच जिनी सेवया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सचर लादया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाए बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाए हर प्रभ आप दयाल होहे ता सतगुर मिलिया।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर पुरख निरवै।

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे। गुर सतगुर अगे को जियो लाए काले, तिस अगे गुर सिख कार कमावे। जे ठगी आवे ठगी उठ जाए।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध गौड़ी की।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम।

हथे पैर भौंदा फिर खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रह जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगै नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुटै बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवां कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवां बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिय श्लोक महला पंजवां नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

एक जिस तो सदेव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

करना, हस्त दे प्रतपाल दा भरण पोखण करना, मेहरवान बख्शेंदे आप जप सच्चे तरना, जो तुद भावै सो भला

जगत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

पात हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम गौड़ी कबीर जी नगल फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गईया काई गेंद राख जो तरिये पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावह कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाउ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत

कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

कीजै जो आपन जीजै। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवता एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवता ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हिंगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगर

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

हे कर जाता शब्द अतीत अनाहद राता जिन राम जानिया तिन्ह पछानिया ज्यो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथै बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करहो जे बहुर ना करना सो पद रव हो जे बहुर ना रवना सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना उल्टी गंगा जमन मलावो बिन जल संगम मन महनावो लोचा समसर एहो व्यवहारा तत विचार क्या अवर बिचारा आप तेज बाए पृथ्वी अकाशा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित घर जाओ जे बहुर ना आवो गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सहज सुपाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कत कथ अंत ना पाया राम भगत बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जे मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

जब लग रात तब लग नहीं नेह रहाऊ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन ग्रह।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथक कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

तिनकै सदबल हारै जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाओ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वातु कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तौ अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव तेरह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गडले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

कैसे जीवन हुए हमारा जब ना हुए राम नाम अधारा रहाऊ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

तथपि रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई कौन को

आधार जल स्थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई, आसन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिनै ना होई, गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम, जो

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद

साध जीवत पितर नामा न कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कहिय है आपन कहया ना ले ही। सरजियो काट है निर्जियो पूज है अंत काल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी भय डूबे संसारी। देवी देवा पूज है डोल है पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्द उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै।

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समा।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए

रहाउ। खंड ब्रह्मांड मह सिंही मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिया तोल ना तुलिया, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सार गपानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन शाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठोर ना ठायो, कहो कबीर भज सार गपानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी है भाव भगत भगवान।

कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसे मरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन भार।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बडभागो रहाऊ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण।

छाडो हो परम प्रगट होए नाचो हो, या माया के डांडे सूर के सनमुख रण ते डरपे, सती के सांचे भांडे डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम

गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाहीं

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निर्भउ तरन तारन राम राया रहाउ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पांच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पति आरा चेत सुचेत चेत होए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल मैं त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड़ भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को उपकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह, चचा रचत चित्र है पारी।

चा इह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा।

न डर हुआ डर उर होए भागै तड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

बसेरा, अर्दह उर्दह मांझ बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

बिंद है बिंद न बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पहो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध हुए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਤਉ ਅਲਹਿ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਵਾਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ,

जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव खखा खोज पर जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा सस्सा सो सह सेज सुवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख शाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो का

खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिछरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सुअन पैर है। पंडित लोग को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार। जा कै जी जैसी बुद्ध होई,

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतनी।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

तोरे मोसौ को न कह समझाय जाते आवागमन बिलाय रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है संका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पंडित पड़े रिचीसुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

तरे जां तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

कौन कहिए, सर्व निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद किया बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

आहे ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै।

एक वर्ण दिसह सबके जो पुजै सो आवै जाय नानक अस्थिर नाम रजाय आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासै परमल रूप उजल मोती चूगह हंस सर्व कला जगदीसै अंस जो दिसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाउ बिरला बूजै पावै भेद साखा तीन कह नित बेद नाद बिंद की सुरत समाय सतगुर सेव परम पद पाय मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा बिकसंतो जिस तू राख है कृपा धार बूढ़त पाहन तार है तार त्रे भवन मह जोत त्रे भवन मह जानिया उल्ट पई घर घर मह आणिया अहनस भगत करे लिबलाए नानक तिनकै लागै पाए आसा महला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर बहुत सियाणप लागै धूर लागी मैल मिटै सच नाय गुर प्रसाद रह लिव लाय है हजूर हाजिर अरदास दुख सुख

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रव राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विच

हर जियो राख हो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए हासा महला पहला एक आवह एक जावह आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पावह से कर्महीन हर नाम ना त्यावह गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

ग्रास एहनस अंदले दीपक दे पाव जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहार ता कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाव दरगाह बैसन हुए थाऊ जा तुद भावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागै दुख लागै तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजै चरनी चलै पजूता आगै बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाव करे ही सबना फल लागै नाम एको बिन कर्मा कैसे ले जेते जी तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसै नाही दुख सुख भाणा तेरा होवै बिन नावै जियो रह नाही मत विच मरण जीवन होर

सो प्रगट जाय सच निशान ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखाणी तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान गुरमुख साच तहा गुदरान। आसा महला पहला काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ सास बुरी। घर वास ना देवे फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी साजनी के हों चरण सरेवो हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया तुम सा मीत ना अवर कोई। ज्यो तू राख है तिव ही रहना दुख सुख देव है करह सोई। आसा मनसा धूब नासक त्रिहो गुण आस नरास पई। तुरी अवस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हिरदय अलख अपेवा। नानक राम नाम मन राता गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

मोह जाय। नानक हर स्यों रहे समाई, आसा महला पहला। आप करे सच अलख अपार, हौ पापी तू बख्शन हार। तेरा भाणा सब किछ होवै, मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ। मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो, जो उपजै सो अलख अपेवहो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन भावै। आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी ता पर उपकारी। जा पंच रासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला दो पदे तित सर्वरडे पहिले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पहला।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता फीय जा एन सलागे भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू न खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला।

जाओ। धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहे जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल

कराया। तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद पावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगहा बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निध पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद सूचै भाओ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन वगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ वछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाउ तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाणी मर मर जीवै तां किस पाई।

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

पाए। हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिल है जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जान है कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण है कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए,

गुर प्रसाद वसे मन आई, गुरमुख विचो आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाऊ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

है, सोग हर कदोय सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गवाई।

रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर गावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हदूर।

ताय अवर ना कोय। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार। आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरै भाग गुर सेवा होए। सो बूझै जिसे आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बना।

समावै सत संगत मेल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुर ते साच समाए जिनको नाम लिखिया तुर लेख ते अन दिन नाम सदा त्यावह गुर पूरे ते भगत वसेख रहाओ जिनको हर प्रभ लये मलाए तिनकी गहन गत कही ना जाए पूरे सतगुर दित्ती वडियाई उत्तम पदवी हर नाम समाई जो किश करे सो आपे आप एक घड़ी मह थाप उथाप कह कह कहना आख सुनाई जे सो काले थाए नाम।

मन वसाई, नानक नाम रते सुख पाए। आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए। इह मन अंधा भूला है किसे आख सुनाई। अंतर लोभ भरम अनलवाऊ, दीवा बले ना सूझी पाए। गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिल।

आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी भवजल तरै, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सियों चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ, इस जुग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार बिन नामे जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै, बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहिए, भाणे मन्ने सुख होई, हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा घर दूजा।

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करह से जाहे, झूठ तड़े कर पछो ताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। यह सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। काल युग मह तड़े पांच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे। प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे। जन नानक का हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिने आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मल तारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

निकाई। नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे। आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही। मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ, हर हर गुरमह भगत रखाई।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग भेन जोगी हर देहो मती उपदेस जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरु ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेलै पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई कौ हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरद

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी ही तिन हुए ना आपै। एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे देख।

समानी तुरिया गुण मिल साध पछानी सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रहे समाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

परदेस झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए, वक्र काढ़हु सौदा कराई रहाओ, साहे पठाया साहे पास।

मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जोह पिरह शिंगारी थिर सोहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

तन ते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कबहू ना बिहावे।

चहो जुगह समाने, रैण पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

पुर केर पाते एह माते आवे जन नानक हर कै अंक संभावे आसा महला पंजवा प्रभ होए कृपाल ता एहो मन लाई सतगुर।

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखोट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मे सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई।

हुई संगा, कुदरत वर्त रूप अर रंगा, करह ना चुरे ना मन रोवन हारा, अवनाशी अवगत अगोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दासरे को किसकी कान, जिस

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत।

रहाउ। त्रिपत अगावन साचे नाय, अठ सठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवां, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंधकूप में,

कीहि, जिसह परापत तिस ही देह। नानक चाख पय बिस्माद, नानक गुरते आया साध। ईट ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीदा हर रस माहे।

अवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा सरन परे की राखो शर्मा। हासा महला पंजवां।

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाऊ। राख राख सरन प्रभ अपनी।

चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवां, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुरपूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवां, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे है किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर घोड़े।

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा घर पंजवां महला पंजवां।

समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावे इहा सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना पाया रहाऊ।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साप ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाऊ माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ए मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखे मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रवाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद।

सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा ताका जन्म मरण दुख भागे

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है।

मुक्त पय अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काढ लिए निरपव पय सगल पव मिटिया राखे राख न हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य

कृपा जिसको बेपना को पाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी तुद आ गया।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुकाने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बीचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले। भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी, सतगुरु सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदास।

पुरख जाना आसा महला पंजवा तीर्थ जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो स्थान बतावो मीता जा कै हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की

गुरपुर हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई।

पाठ घाट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइयै, सो जन जम की वाट ना पाइयै, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होवै नानक तिस लग पा।

सतगुर अपना सद सदा मनाव हो रहाओ। सतगुर का सत शब्द कमाव हो, थिर कर बैठे प्रभ अपना पाव हो। पर का बुरा

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

सतगुरे अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे बिन हारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखो एक ओही

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा।

हर जन छूटे सोए रहे माया मद माती जागत भगत सिमरत हर राती रहाउ मोह भरम बहु जोन पवाया अस्थिर भगत हर चरण त्याया बंधन अंध कूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझ हर नेरा कहो नानक जो प्रभ सरनाई इहां सुख आगे गत पाई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक।

जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करो री रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारे, खिसर गयो भूम पर डारियो, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे,

आनंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रैन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै। ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ। उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साख जगत। उनकै संग तेरी सब बिद थाटी, ओस बिना तू होई है माटी। ओह बैरागी मरै ना जाए, हुक्मे बादा कार कमाए।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

मां गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी। वड परवार पूत अरतियां मोहे पचे पच

तिस राज माल, नानक दास जिस खसम दयाल। आसा मोहल्ला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी। जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही। लाग छुट्टो सत

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने।

लाए, नानक आए पए सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सादे ही भोग लगा।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

जसै अगानी जप जप जीवा सारग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज घर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जा।

सूख सहज मेरा धन सोहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना। से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जाका दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जा की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निर्भव पद पाई है, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए।

बंदन काठ सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

माता कै मन बहुत बिगास जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मह लिखिया तुरका रहा दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सच।

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया परपूर सच

आनंद घना मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकी शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाउ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई। आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा, आसा महला पंजवा, निमक काम स्वाद कारण, कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है, अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही आमाना, छोड़ जाहे तिन्ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरियो, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विदे आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख नाही परवे सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण गाए। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो हो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे। तत नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक। मन मानक पतियाना रे, आसा महला पंजवां दुपदे। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रहण

के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचहो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन मिरदलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपां भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे

भौजल लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यों ज्यों राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो हो संत संगाहे नाम त्यावो हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

पाद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे। लोभ बिखया बिखे लागे, हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावं भ्रम पीत जीत मटावं निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

लाथी तिस पुखाना नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिए सहज तुनीहा साधु रसन पनीहा।

कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै तां सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रे भवन सूजै आप गवावै बाणी बूझै सच समावै शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मानिए सच सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख या

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी।

जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन ती।

कहया बूजै बिख का माता जग स्यों लूजै उत्तम संगति उत्तम होवै गुण कौ धावै अवगणित होवै।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान, जिस कायन तन सहज ना जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा महला पहला, गावह गीते चीत अनीते, राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम त्रिपतासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाण है, गुरमुख निर्मल नाम वखाण है। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किलविख दुख काटे हर नाम परगास, कर विचार आचार पराता। सतगुर बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना। बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे। गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हउमै कौरा। रहाओ इहो मन मुगद, कहो क्यों रहसी। बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले। काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा। इहो मन पांच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा। गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई। गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै। गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी। घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायण गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै, इहो मन राजा।

ग्रास इकत थाएं कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

कहा संचह धन जाए बिन हर भगत ना पवी थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां।

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खोआई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिक्के कड है ना आए राम ना कबहू चेतेउ हुण कहन ना मिले खुदाए एक घर आवे अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे दुख जो तिस भावे सो।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मह के तारा राखी है

बख्शनहार शब्द कमाव ही। नानक मंगै सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

ठानै, नित नित खरा संभाली है, सच सौदा पाई है, खोटे नदर ना आवनी, ले अगन जलाई है, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है, फल अमृत होई, अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम ना भेद है, हर रसन रसाई।

सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप न जाही लखणे क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खाणी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिर आणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी तिन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देह ता साच वखाणी जा को सच बुझाव है अपना सहजे नाम समाणी आस्था महला तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया।

जाने गुरमुख पाइया नाम निदान रहाउ। सतगुरु भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारी सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नामै भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल कीर्ति।

कराई, आपे गुरमुख नाम वसाई, आप भलावे आप मार्ग पाई, सच्चा शब्द सच समाई, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बहुराणी, तीन भवन मह एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अन दिन भोगे हों मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए हों मैं मार, हर जपिए पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार।

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हों मैं मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सो जी पाई।

मेरे भाई अनदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाऊ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा हुई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ बकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा घर अंदर सब वत है बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निधान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाउ हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पथ गुआई जमपुर बद्दे मारिय बिरथा जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनु देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सब

यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सींगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सींगार है सुभावंती नार सा सबराई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाए प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पथ शब्दे होए बिनना वै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाय नानक नाम रते तिन हों मैं।

आप दे आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योति अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

कहे बहुविद श्रिष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार इक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंचिया कथ कहने अंत ना पाई गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, बखर नाम लद खेप चलावो, लैला गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव, मीत साजन सुत बंद पा को होत ना साथ, एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ, चरण कमल बोहित पय लग सागर तरयो ते, भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों नेह, साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास, जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास, सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद, कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़ी घर चौथा, संता की जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ, जिस सिमरत दुख बीस

मिले प्यारी तिस कै लागो पाई जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई साची प्रीत ना तुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई जो तुद भावे सो भला प्यारी तेरी अमर रजाई नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुभाई सब

जलिया जमराज की रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी

कराई सब किस जाने, नानक शायर इव कहिया, राग आसा महला तीजा पट्टी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अयो अंग सब जग आया, काके कंग काल पया, रीरी लल्ली पाप कमाणे, पर अवगण गुण विसरिया।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा फिर रली आला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औं पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन फिर आगे शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारे हम नाही लोकाणी आसा महला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लिखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज घर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागर रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनों तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा।

पाद पुरख अपरंपरु तारे राम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो तां की सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

साधु आसा महला तीजा संत घर पहला हम करे साचा सुहला साचे शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सिंगारी सच सुवारी सदा रावी रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी औगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावै कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चे शब्द सुभाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारी सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जां फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर तीजा।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंध लागे गुरमुख।

धुनि उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जा तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, यो कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चेते आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए,

साए सब संसाधु दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजह नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दातै ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोगह दुख की बिरद वधाई नानक बिकम

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम लै जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवित्र होए आए, किस रूप नारेखिया काई, रामो राम रविया काट अंतर, सब तृष्णा भूख गवाई, मन तन शीतल शिंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा, नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम, किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया, महाबिखम जम पंथ दुहेला, कलू खतम हो अंधियारा, नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा, रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम, एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परम दा इकत कर आणै राम, मन इकत कर आणै सब गत मित।

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया। राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद्ध गई सुध हुई। राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब होआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाई।

हर हर नाम जपया दुख बिनसिया, हर नाम परम सुख पाया। सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। हर हर नाम तिन्नी अराध्या, जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपी है सतगुर पाए जियो। हर

भागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल वेख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सखाई गुर शब्दी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वडभागी हर रस पाया से धन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगै पग साधु।

मन तन हर गाव है परम सुख पाव है हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हृदय क्रोध जलाए दियो मन हृदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जोग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिके टकाए जियो महाजुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सत गुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए दियो कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हृदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामै हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नामै हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देख सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कद ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तहारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कढ लेव हो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुकत सुख होई जीवन मरन हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जै हर वस्त लड़ी जै जिसकी वसत सो ले जाए जियो मन मुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वसत प्रभ लय स्वामी जन उभरे शब्द कमाए जियो जग मरन न पाया नित आप लकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया गुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरन ना होई। हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई। जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम अवर ना कोए जियो। जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर। आदि निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई। अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

ब्रह्मगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरुष अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो।

सब तेरे शब्द समाए दियो, सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए, शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए, नानक नाम समाए दियो, सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यों पावे तिवें चलाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछै होर खाए कनेरी जन नानक हर कुन बीजिया फिर तोट ना आवै हर कुन केरी गुर सिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी कोई कर गल सुनावै हर नाम की सो लगै गुर सिखा मन मिठा हर दरगाह गुर सिख पैलाई है जिन्ना मेरा सतगुर टुठा जन नानक हर हर होया हर

मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे हर गुरु मलावो मेरे प्यारे घर वसै हरे रंग रली।

करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर तारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चात्रक बूंद जिवें मन

रुते फिर बाजड़ियों हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक देख बिगसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते।

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरियां मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर टुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु।

भया गृहवास आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज।

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्र

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागी।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरण तेरी राख किरपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरण तरिय अपने प्रभ पावा।

महाराजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो सह

मीठा ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजी गुर पूरै अपदेसिया जीवन गत पहते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना सुत प्रात मीत सबहू ते प्यारा राम राजे सबहू ते प्यारा पुरख नरारा ता की गत नहीं जानिए हर सास ग्रास ना बिसरै कबहू गुर शब्दी रंग मानिए प्रभ पुरख जग जीवन।

हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुरु गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

जम पंथ भणी है तह साध संग ना डरपी है कर कीरत गोविंद गुणी है सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हर सियो की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़िए चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माहि। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे। ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी, जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझह अराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत हुए गते। कोट बिसन अवतार, संकर जटा तार। चाह है तुझह दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया, ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है। दुख दर्द भ्रम जाय, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसैव सूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उदरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उदरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

सहज सुपाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत वच।

आवे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जाको राम पतार ताके आनंद कणा आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो,

अपनड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है सास सास।

दृष्ट चंती बिनवंत नानक मेरी इच्छ पुनी मिले जिस खोजंती नस मंजो हो किल विखो हो करता घर आया दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण। विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिद चरण गहे।

काहिंदड़ो सो वेखी साथ है संग देखै करनहारा काए पाप कमाइय सो कृत की जय नाम लीजै नरक मूल ना जाइय आठ पहर हर नाम सिमरहो चलै तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते वलवंच कर उदर भर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहे।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महील रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ा।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गात।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श

तन ध्यान ही मन लुब्ध गोपाल ज्ञान ही जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख बदीरन सगल इच्छ पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सभागे मिलना हसीज सुहंतिया प्रभ

करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

आए रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना में धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

यो बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्ते ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा।

तीर्थ नावहै अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

बंदना फिर फिर जोनी पाहे हों मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए हों मैं एहो हुक्म है पये किरत फराहे हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंद पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया,

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

वास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलख ते आईए फल तेवे हो पाईए जे वे ही कार कमाईए जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहे बाहरा होरे रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह शिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार। धर्मी धर्म करह गावावह

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो।

सह साच रही सबको सच समावे। रिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाय लय परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाव खदाई अल्लुह पहया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, हिनी नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरल किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आव है पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सब को निवै आप कहो हर को निवै ना कोई, धर ताराजू तोली है निवै सो गौरा होए, अपराधी दूणा निवै जो हंता मिर्गाहे, शीस नवाया क्या थी है जा हृदय सुधे जाहे, महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम, सिल पूजस बगल समाधम, मुख झूठ बेपूखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गलमाला तिलक लिलाटं, द्वे तूती बस्तर कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं, कहो नानक निश्चौ त्यावै।

मूर्ख सूत जत गंढी सत वट एहो जनेऊ जी का है ता पांडे घत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए धन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौंकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोआ ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिया बामन वटे आए ओहे बकरा रिन खाया सबको आख पाए होए पुराणा सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वत्त वट तागे अवरा।

धार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

भाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे तां सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस पाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां सह टुटै नौ निध पाईयां। सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठायाए सुचे अगे रखियोन कोई ना पिट्यो जाए सुचा हुए कह जीविया लगा पढ़न सलोक को थी जाए सटिया।

तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामै रस खाहे नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे आह पंडों होऐ दोस्ती पंडों चलै राह पांड मोआ पांड पालीए पांड होऐ बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडों ही पांड उपजे पंडै बाज ना कोई नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

आए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे है रंग रूवे है चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा।

कह तारी देख है कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु विसारी है अपना।

आई नानक आशिक कांडी है सद ही रह समाई चंगा चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए आशिक इहो ना आखी है जे लेख वरतै सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवें।

सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नजर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर काली है। श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गर्भवाद, गल्ला करे कड़ेरिया, खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिले।

नाल आणी दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आणी दोस्ती।

किसनो अगली ओह वजहो पे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित पै

इन भेद अपे हो ना चूके कही ना उपज उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संतन।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एकै ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो

भाव आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अर्ध शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

न कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते।

कंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन

तीन देव परताख तो रह करह किसकी सेव। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ। पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार। मालिन भूली जग भुलाना हम।

पन बीते 20 वर्ष कस तप ना कियो 30 वर्ष कस देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो शायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत है ले गयो मेरी राखत मुग्द फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिवलावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर धन पायो अंते चलदिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संत हो अन तन कछुए लै ना गयो आई तलब गप

सो कृत कर लीजै रे मन रहाओ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुखताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागै।

के आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त शरी के माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक

राय, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुरले

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या।

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानंग, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जय, पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेत, कनक कामन लाग, कर विचार विकार पर हर,

साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाऊ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी।

खबर ना करहै दीन के बौरी ताते जन्म अलेखै रहाउ साचक तेब बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

मैल जे तीरथ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

वह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सद केला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

हर जन्म दैला गुर उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास पंच दोख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

कुछ भये हैं गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना।

आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना,

हीरा रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया फिर दै वसिया पार ब्रह्म भगता मह गनिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरी द खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहूम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदिया शे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछै।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

आओ, हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साख अंत होए सखाई, हर दिन होर रास कूड़ी है, चलदियां नाल ना जाई, हर मेरा धन मेरा साथ चल, जहां हों जाऊं तहें जाई, सो झूठा जो झूठे लागे।

आए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो हऊ मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

आस गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाउ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम परगास। गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सत संगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ को है, मेरे भाई जना मोको गोविंद। गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ। सुख साध

भागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहै कौआ काग कौ अमृत रस पाईए तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहै अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है गुजरी महला चौथा हर जानी उत्तम उत्तम बाणी मुख बोलह पारे उपकारी जो जन सुने सरदा भगत सेती।

लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सर

चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम त्या।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोहे मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करो हर ध्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कहो संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्र मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल ना उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

अठसठ मज्जन कर इछनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायु अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्यान।

चारु सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारु पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ ताज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस का।

बीच कुल ऊंचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछ सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कहवासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंदक, तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे, किस साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आहे हो तुमरा तुरा रहाओ, बल बल बल बल चरण तुम।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे तू तह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंधेसा।

तह भरम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाऊ, सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही, नानक टेक पई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्स दीजै, जस गाँव निसे अर पोर, केस संग दास पग चारू, एह मनोरथ मोर, ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चितवों हर रसन आराधन।

ते ताई साध संगत को जोहि न साके मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत परजारे मो को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास होए खिन मह सुख आनंद सेती घर जाइए जाते काल ना बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाउ मोहे सरन दीन दुख भजन।

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद।

पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निकूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना।

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करन कारण योग मन तन बांछिए जन।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रहो प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परेउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए।

सो सिख कतियले सो वैद जे जाणै रोगी तिस कारण काम ना धंदा नानी धंदै गिरिह जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले चेत बन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बेख ताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कमन कमन जाचह प्रभदाती ताके अंत न परह सुमार जैसी भूख होए अभ्यंतर तू समरत सच देवन हार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाईए तेरी भगत भरे भंडार रहाउ सुन समाध रह निवलागे एका एकी शब्द बीचार जल थल धरन गगन तै नाही आपे आप किया करतार ना कद माया मगन ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही भंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास होए मन अंतर तैसी

तम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पह नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै

रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात हुई सत संगत की वड्याई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाई।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यो बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी। गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी इहो परपंच खेल किया सब करत हर करत सब कल धारी हर एक को।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार तरनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणे वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिया तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छट बेकारी हर हर नाम त्याई है हर हर

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

वस्यो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कुमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो।

इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा। सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाय किते ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया नाल ना।

आई, सतगुरु की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदै लिवलाई, सलोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदै सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावह गुणी निदान, हर सुख दाता मन वसै, हऊ मैं जाए गुमान, नानक नदरी पाईऐ, तायन दिन लागै ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता, अंदरों कपट वकार गया, मन सहजे जिता, तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, आनंद नहर के गुण रवै, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मिता सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिवलाए,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै

आए गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसै।

रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

नानक वाह वाह जो करहे हौं तन मन तिनको देव महला तीजा। वाह वाह साहिब सच है अमृत जाका नाम, जिन सेविया तिन फल पाया हौं तिन बलिहारे जाऊं। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए, वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे, वाह वाह भावे नानक वाह वाह जो

कहाहि नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुमाहि पौड़ी ताडी तिसनो आखिया जे खसम तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार ताडी दर घर पाए सी

किया, ज्यो राजे राज कमावंदे दुख सुख भिड़िया, ईश्वर ब्रह्मा सेवंदे अंत तिनी ना लहिया, निरपो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया, तिथे सोग वजोग ना व्यापई अस्थिर जागतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किसे

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन ने चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा।

सच्चा साई पुरख वाला सदा सदा हो तुद त्याई जी जंत सब तेरिया तू रहिया समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए नानक निश्चल को नहीं बाजो हर कै नाए पौड़ी।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ पर्वत गारदा जिसनु करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ आप।

मत वन्य मित्र ऐसा डरे से खाट ने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे शप तिस स्यों लाइन रंग।

संग जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

आप दयाधारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगहाए। सलोक महला पंजवां।

गुणगाव कूट कलीचा उपजह नानक बिसरै नाव महला पंजवा नानक सतगुर भेटै पूरी होवै जुगत हसंदिया खेलंदिया पै नंदिया खवंदिया विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखें आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ते से जोन ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै अजोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै।

हार जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार रहाव लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मरार देव गंधारी हर गुण गावे हम तिस बलिहारी देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिल है जूठारी हम रह जिये होर मुख होर होत है हम कर्महीन कूड़ियारी हमरी मुदर नाम हर स्वामी हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती ज्यों बेसवा के करपूत जमत है तिस नाम परयो है त्रक्ती रहाओ जिनका हृदय नाही हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती ज्यों नुगुरा बहुबाता जाने ओह हर दरगाह है प्रस्ती जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिन्ना साध जना पग चकती नानक पतत पवित मिल संगत गुर सतगुर पातै शुक्ति छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीच हो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

हां किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिन्हें प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते पत।

देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रास जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार

जिस लाड लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कब हूं चलना विकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा।

दयाल दुख भजन मेरा सगल अंदेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब कितवो तब तुहारी उन समहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोर

गुरुचरण तो उत्तरी सगल दुराख्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोह।

करके रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुलह समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पीतर, तास ग्रास उचारियो। नानक ओट गही जगदीश, पुनः पुनः बलिहारियो।

नाम लिय कत पाइया मन रूचा खोज असंखा अनकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु विद पेख्यो दूजा नाही री को खंड दीप सब पीतर रविया।

चार बरन्ना मुक्त भये सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर सेवा।

तहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

प्राण आधार समर्थ अथाह बड़ा प्रभ मेरा घट घट अंतर साहिब नेरा ताकि शरण आसर प्रभ नानक।

छुटकी रे मन छुटकी रे, काकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू की रे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा ने।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख एकत्रिया बहुबंध परिया फिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवां हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाव इन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

तेरा मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत बुठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मलावै राम हौ मन देवो तिसे आपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदियाड़ा फल पावै राम नानक भज हर सरनागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम त्यावै राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम परगासे राम हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यो जल बिन कमल उदासे राम गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर

लड़िए। हर अमृत हर तरनाथी राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए। जन नानक खिन हर राते राम, बिहागड़ा महला चौथा हों बलिया।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले है राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सहराम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम

जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, तिन जान सब डर सुट कत्ते राम, हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए, सब झख मारन

राम तिनका संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर राव

कियो, हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए, जिनको बधात तुरहु लिखिया, तिना रहन दिन लिव लाईए, हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिलिया साधे, जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे, कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

धावे जिस हुए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे भाग मस्तक हुए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजिया दह दिस खोजत हम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमें हर रस चोया।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़े सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता। जिन्नी सच वणंजिया हर।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वदाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजालीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम।

है प्रेम कणा हर की भगत मंग है हर भगत पाई है प्रभ ते आई है जाहे मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम भीत हर हर मिल भगै है।

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊच अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घन विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रब राखन हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट कट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाणे राम, सरपर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाईऐ, हौ हौ करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने, तार अनग्रहो, अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो, साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे, सगल कलमल दुख जले।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाए, नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाण मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबला,

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है, हर सुखदाता सबना गल्ला का, तिसनों त्याए दया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है, हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे, जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुभाए।

पाई, बंधन तोड़ै सच वसै, अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का, जिन किया तन सा।

मन रहे सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु, भौंक मोए बिल लाय। गुर कै शब्द मन तन भिजे, आप वसे मन आय, नानक नदरी पाईए, आपे लई मलाई पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आप कथे आप भिजे, आपे ही बह पूजे करता, आप परपंच करीजे, आप परविरत आप निर्विरति, आपे अकाथक थीजे, आपे पुन सब आप कराई, आप लिप्त वर्तीजे, आपे सुख दुख देवे करता, आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा, सीखा अंदर हो जोर छाड़ तू, पहो कर झल गवाए, गुर कै भय केते निस्तरे, भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध।

आपे खंड वर भंड करे, आप समुंदे आप है सागर, आपे ही विच रतन धरे, आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनों गुरमुख करे हरे, आपे

सरे सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हौ मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाइए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होवे सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म

पर बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आनी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइय नानका, खादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे।

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जमै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौ पाल पौड़ी आपे 68 तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम आप दयाल हुए भौ खंडन आप करै सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिस दी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यो चेतना लावे जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै अहनस जलत बिहाए जो तिस भावै।

गुर पर साथी जीवत मरै हुक्म बूझै सोय नानक ऐसी मरनी जो मरै ता सद जीवन होए पौड़ी जां आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै अपनिया सेवका की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब घटे अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर युग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे।

प्राप्त हुए। किस योगी की नगरी सबको वसे, पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी, जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार।

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

कै शब्द मलाए, मेरी मेरी कर दे घट गए, इना हाथ के हो ना आया। सतगुर मिले है सच मिले, सच नाम समाया। आसा मनसा इहो शरीर है, अंतर जोत जगाए। नानक मनमुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। वडहंस महला तीजा, सुहागनी सदा मुख उजला। गुर कै सहज सुभाए, सदा फिर राव है अपना। विचों आप गवाए, मेरे मन तू हर हर नाम त्याए। सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरियां बिल लांदियां, तिन्ना महल ना पाए।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहया समाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाय।

मान आए, परमे भूला फिर संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

अपने सतगुर है गुर पूछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए आऊ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव, लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा, कट कट वस है जान है थोड़ा।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

तब दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल थल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

संभाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम प्रम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता, हों पई उड़ीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा, यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा, जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा, मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए, जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए, तन तन ते सुहागनी अमाली, जिन सहो रहया समाए, हों वारिया तिन सुहागनी अमाली, तिन के तुआ सद पाए, जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे पिकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध

कब हो ना जावे, राजू ता तेरा सदा निहचल, एहो कब हो ना जावे, चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे, जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिया हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे कर्ण पुकारा राम उभे कर्ण पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

किस आखी है होर करना किछू ना जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों किस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है होर करना किछू ना जाई।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना भवजन फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

सकै कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै भज पय हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगै।

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया धर्म है निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई, हऊ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते, हऊ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावै,

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाती देहो सतगुर चरण हम तूरा।

वह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रब के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रब मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सत

0: है मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर चूरे।
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ा हंस।

जमाणी अस्थर थिया अमृत पिया रहिया आवण जाणी सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा कहो नानक।

ने से परधाने हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नाश भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याइए राम मन इच्छे अड़ा फल पाइए राम मन इच्छ पाइए प्रभ त्याइए मिटह जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया भई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाइए बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याइए दरवाजे है अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाय कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला घर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

पूर्वकमाय धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जान आगै सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्भ कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाईऐ नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या वेहाना साहिब सिमरिहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाना जो तिस भावै समरथ सोथी है हीलड़ा एहो संसार जल थल मही अल रव रहिया साचड़ा सिरजन हारू साचा सिरजन हारू अलख अपारू ताका अंत न पाया आया तिनका सफल पया है एक मान जिन्नी त्याया ताहे ताहे उसारे आपे

दूजी कारना भाले आप नरालम धंदे बाधी कर हुक्म छडावन हारू अज कल करदिया काल ब्यापै दूजे भाए विकारू जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गबारूआ ना जल लेप तुलाइया ना भोजन प्रकार।

कारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

प्रेम समाए, जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोइया रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए सो

सुमाई सच्चे नाम सुमाई हर गुण गाई मिल प्रीतम सुख पाई सदा आनंद रहे दिन राती विचों हों मैं जाई जिन्नी पुरखी हर नाम चेत लाया दिन कै हों लागू पाई काया कंचन ता थी है जा सतगुर लए मिलाई सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाई बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगे जाए क्या देन मुँह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए तिस जेवड़े अवर ना सूजई किस आगे कही है जाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सर नाए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए अन दिन भगत करह रंग राते नानक सच समाए जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिनकै लागू पाए वडहंस की वा

सब आखो हो सतगुरु वाहो वाहो, जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा, भै विच सब आकार है, निरपव हर जीओ सोए। सतगुर सेवै हर मन वसै, तिथै भउ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै, ओहे ना सकै कोई। गुरमुख मन विचारिया, जो तिस भावै सो होए। नानक आपे ही पत रखसी, कारज सवारे सोए महला तीजा। एक सज्जन चले एक चल गए, रहंदे भी फुन जाहे। जिन्ने सतगुर ना सेवेओ, ते आए गए पछताहे। नानक सच रते से ना विछड़ है, सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन है, जिस अंतर हर गुणकारी। तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं, जिन हऊ मैं विचों मारी। सो सतगुर पूरा धन धन है, जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी। नित जप्यो हो संतो हो राम नाम, भौजल बिख तारी। गुरपूरै हर उपदेश।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बद्दे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पव हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया सलोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई भेखी भुख ना

मनाई इस पे कै थाम हो गिरहो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योतिष भाव है से भले जिनकी पत पावह थाय महला तीजा।

निर्भउ को नहीं, जिचर शब्द ना करे विचार। महला तीजा, भेखी अगन ना बुझई, चिंता है मन माहे, वर्मी मारी साप ना मरे, त्यों गुरे कर्म कमाहे। सतगुर दाता सेवी, शब्द वसै मन आए, मन तन शीतल शांत होए, तृष्णा अग्न बुझाए, सुखा सिर सदा सुख होए, जा विचों आप गवाए, गुरमुख उदासी सो करे।

पौड़ी। जिन जग जीवन उपदेसिया तिस गुर को हो सदा कुमाया, तिस गुर को हो खनिया। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, तिस गुर को हो वारने। जिन हो मैं बिख सब रूप गुआया, तिस सतगुर को वड पुन है। जिन अवगण काट गुणी समझाया, सो सतगुर तिनको भेटिया। जिनकै मुख मस्तक भाग लिख पाया। सलोक महला तीजा। भगत करह मर जीवड़े, गुरमुख भगत सदा होए। ऊना को तुर भगत खजाना बख्शिया, मेट न सकै कोई। गुण निदान मन पाया, एको सच्चा सोए। नानक गुरमुख मिल रहे, फिर विछोड़ा कदे ना होए। महला तीजा।

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिलह प्यारिया सो तुद मिलै गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। सलोक महला तीजा रत्ना पारख जो होवै सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझै बूझन हार। मूर्ख आप गणाइंदे मर जम्मै है होए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगै प्यार। सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार। कृपा

पातशाही भगत जना को दितियन फिर सत सच्चा हर बनाए सदा सुखिए निर्मले सतगुर की कार कमाए राजे उए ना आ

सुन सिखिया साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

इन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधै व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख होवै है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहणे गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावै सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिलै सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवै जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकलै सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लखना लखना जाई। पूरा गुर वे खा लिया, शब्दे सूझी पाई। पुरख से वह से पुरख हो वह, जिन्नी हों मैं शब्द जलाई। तिसका शरीक को नहीं।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर हो है विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

गई। हर का नाम गुरमुख किने विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जां गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, पहना किसु ना जाए। महला तीजा, हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुरु दाता जी का सद जीवै देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्चरह, जुग जुग वरतावन हारा, इहो मनुआ सदा सुख वसै, सहजे करे वापारा, अंतर गुर ज्ञान हर रतन है, मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाए, तो हुआ दर सचियारा पौड़ी, तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद पया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणे गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए, मन हठ भेख कर भरम दे,

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार, दिठै मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना

0: मन हर सरनी पड़ रही है,
1: हर बिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है, उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुरु विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रता एक रंगी, शब्द सुवारण हारा। सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से भाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर पाई।

आप राख जो तेरे मन पानी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभ तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते केन फल पाया हरनाक्ष नख बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत न

पछताई। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसै मन अंतर। विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत।

करनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हृदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावै गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझै गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजाणै हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिलै उल्टी पई पाई जीवत मरै ता बूझ पाई सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागै पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाउ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईऐ पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिवलाई। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाई। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मै जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मै रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेव है ता सुख पावे, नाही ता जाहेगा जन्म गवाई रहाउ। त्रै गुण धात बहु कर्म कमावे, हर रस साध ना आया। संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, घरे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मलाव हो, हर नाम देव हो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहज सुमानी, पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल हुआ, किल बिख काटन हारा। शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है सेई। सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे। गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या।

रे मर जा। आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंघा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला। सोरठ महला चौथा, चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया,

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा कर सूझ वेख प्रभ आपै आपे बण तिण सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापै जप मन हर हर नाम रस त्रापै अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापै रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप तरै प्रभ आपै आपे जाल बताएं दा प्यारा सब जग मछली हर आपै

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाउ आपे धरती आप जा।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटे आ जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, ठोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौं जाति किस आरादी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहता क्या रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख।

अल्लाह सब किश कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला सोरठ महला पंजवा घर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिय पाई मन तन हिरदय तार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजै पाई से तन होए शार साध संगत को वारिया पाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जानाया पाई इस बिन अवर ना कोय रहाव नाम मिहूने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी बिन सच सोच ना पाईए पाई साचा अगम धणी आवण जाण ना चुकई पाई झूठी दुनी मणि गुरमुख कोट उधारदा पाई दे नावै एक कणी सिमरत सास्त सोधिया पाई बिन सतगुर भरम ना जाई अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाई चारे कुंडा सोधिया पाई बिन सतगुर नाही जाई वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम त्याई सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साची सोई नदर करे जिस अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पाई बिरला कोई कोई नानक रत्ता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोठ महला पंजवा दो तुके जौ लो भाओ अभाओ इहु मानै तौ लो मिलन दुराई आन अपना।

तरी पड़िया ताको सर्व परगासा अज्ञान अंधेर है सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मांगे गह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे सोठ महला पंजवा तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब किया संतन बिन अवर ना दाता दिया जो जो शरण परे साधु की सो पार ग्रामी किया रहाउ कोट पराध मिट है जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है इहां सुख आगे मुख उज्जल जन का संग वड भागी पाई है रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में नानक लेहो निभाही सोठ महला पंजवा कर पहला जा कै हिरदय वसया तू करते ता की तै आस पुजाई दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन भाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी।

अज्ञान प्रगट भय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई कहो नानक जिस भय दयाला तां को मन ते बिसर ना जाई सोट महला पंजवा सगल समग्री।

आद शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याइए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोठ महला पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपनी मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारी गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते।

हम पलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी चौठ महला पंजवां।

पाई, एहो मन तेरा पाई रहाउ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों बेवहारा, संतन स्यों हमलाहा खाटिया, हर भगत परे पंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करे गू, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद भये सुख पाया। संतन कै प्रसादे कहो नानक, हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादी।

नहीं पाइए। हो होरे न तू सगल की मेरे मन तव आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना पाने अंतर भेद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार

तेरा अंध मंगल बिसरामा मन बाँचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह माने गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सोठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सोठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी

गुर पूरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पई कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानु नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया।

अनंत अनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वड अवन ना कोई टूठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार है राखियो बारिक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाउ धर्म है सुख बाहर पुन सूखा प्रभ अपने भय दयाला।

रतन जास गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

योग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुरपूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाउ आनंद बनोद मंगल गुण गावहु गुरु नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

आप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उरतार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे।

सारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड।

जी जंत सब पए पवित्रा, सतगुर की सच साखी, बिघन बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख घर।

प्रभ त्याई हर मंगल नानक गाइए सोरठ महला पंजवां सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रस

पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया।

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब हुए रामदास सरो

मिल त्याई है मन पाछत फल पाई गुरपूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ घटा घट दामन चमक डरायो तेज अकेली नींद नह नैन है फिर परदेस सदायो।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दोरायो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो

गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान रहाउ। जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे, कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

तब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है, कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैजर खाई है। अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सबके

प्रभु स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संता तूरी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

खेम प्रभ धारी सही सलामत सब थोक उबारी गुर का शब्द विचारी रहाओ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया चौठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया ता सह

आओ प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां।

मिल साद संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

आक रहाई, विघ्न गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जीव

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत होवै, उधरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, बिरलै किन्ही जाती रहाउ। गुरबाणी गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो हो राम जपत सुख पाया।

कै पाणै दास बाणी ब्रह्म बखाणै नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया सं

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाउ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

मन तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अदमाई साध संग

को धावत केहे बिदरूकों ताहि रहाउ वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमुख नाही ए बसावै पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अज

नानक निज मत साधन को पाख्यो तो हे पुकार चौथ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निरतन देखो नर कौ संग साढ़ सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागियो जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

भाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नामंग। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामंग। मन मुख झूठ लह पैमान।

क्या कथिए भाई, चालो सदार जाय। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काय। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भलाए एक भगती

प्यारी अमृत रसन हरी बूढ़े भारी पै बिना प्यारी तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबी है प्यारी।

बसे भले प्यारे, शब्द रखते रंग होए। किसकी संगत जे मिले प्यारे, रस लै तत्व लोए। पत परवाना साच का प्यारी, नाम सच्चा निशान। आया लिख लै जावना प्यारी, हुक्मी हुक्म पछाण। गुर बिन हुक्म ना बूझिए प्यारी, साचे साचा तान। हुक्मै अंदर निम्या प्यारी, हुक्मै उधर मजार। हुक्मै अंदर जम्या प्यारी, ऊंदो सिर कै भार। गुरमुख दरगाह जानी है प्यारी, चलै कारज सार। हुक्म

जाए। हुक्मे शब्द पछाणी है प्यारी दरगहा पैंदा जाए। हुक्मे गणत गणाई है प्यारी हुक्मे हों मैं दोई। हुक्मे पवै पवाई है प्यारी अवगण मुठ्ठी रोई। हुक्म सियापै साहा का प्यारी सच मिले वडियाई होई। आखण औखा आखी है प्यारी क्यों सुनिए सच नाओ। जिन्नी सो सलाह प्यारी

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोय मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए फिर है बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेजियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा उन्ना की रीस करे सो बिगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन

जित दिन विसरह पार ब्रह्म पाई, एत दिन मरी है चूर, कर्ण करावन समरथ हो पाई, सर्व कला परपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावै ता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल परगासी है पाई, हृदय होवै परगास, प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश, गुरपूरै संतोखिया पाई, ऐनस लागा पाओ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई, निश्चल पाया थाओ, जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जियड़ा जल जाओ, बहु गुण मेरे साहिबै पाई, हाँ तिसकै बल जाओ, ओ निर्गुण आरे पालदा पाई, देन थावे थाओ, रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाम, जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाव, तिस बिन घड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर, सास ग्रास ना विसरै पाई, पेखों सदा हजूर, साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहया भरपूर, जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मर दे चूर, अंचल लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई, कीतोन अंग अपार, मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार, नानक तिस शरणागति पाई, जे किल बिख काटन हार, चोरठ महला पंजवा, मात गर्भ दुख सागरो प्यारी, तैं अपना नाम जपाया, बाहर काड बिख पसरिया प्यारी, माया मोह वधाया, जिसनों की तो कर्म आप प्यारी,

उपजिया सोगा भोग पुंछाए पुलायन प्यारी उतरै नहीं वजोगा जो गुरमेल उदारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजे प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारी सो मोह काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विध दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंड होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया, नह मिलिए एह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए पी कर कर रहे आ, वड़ी आर जा फिर जन्मे, हर सिंह संग ना गए आ, राज लीला राजन की रचना, करिया हुक्म अखारा, सेज सोनी चंदन चोआ, नरक कोर का

नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन

सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवस्ती सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले

कर्म मणि सब सच महला चौथा सूरठ ताम स्वामणि जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर।

जे गुरु समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना ये गुरमुख मिल है सुपाय सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अवमान करहें वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह बधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिक संग्रह करतै आप खवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साधे आया, शब्दे ही नाओ उपजे शब्दे मेल मलाया, बिन शब्द सब जग बोराना विरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया, पौड़ी सो हर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइय तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याय निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइय जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइय गुरपुर वेखा लिया गुर सेवा पाई है। श्लोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी दे, जियो वन्ये चौखनी है सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिठ सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हउ मैं विचों जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अख अख तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हउ मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भउ पया बडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हउ मैं शब्द जलाए। सच रति से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बत्ते दुख सहाय।

आई नानक गुरमुख मिला बड़े आईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी।

मन तन आगै राख कै उभी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सत

हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई घर मंदिर महल सवारी है।

सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है

पिचै पिचै सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आएंगे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणत सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना जाननी, मूर्ख अपने सुआई।

परमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जो माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

रे जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाय, सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर नाय पुजियो चाओ, शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कारण कमाय, जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाय, नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाई नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैण सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यो जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यो नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हरे अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिलै ता पूरा पाई हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिन सप्रभात।

जाए। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। सलोक

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै पया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे